0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: 2026 में पहुंच गए हैं, वो भी ऑलमोस्ट 2026 के एंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन वन थिंग हैज नॉट चेंज्ड इन द लास्ट 600 डेकेड्स, और वो ये है कि जब आप अपने बॉयफ्रेंड के घर पहली बार जाते हो उसकी मॉम और डैड को मिलने, इफ यू आर वेयरिंग अ सलवार कमीज दे विल लव यू, अगर आपने जीन्स पहने दिल बी लाइक लड़की काफी तेज लगती है भाई, इट्स जस्ट डेनिम, माई लेग्स आर कवर्ड, द सेम थिंग दैट अ सलवार डज, लेकिन क्योंकि ये डेनिम की सलवार है इसलिए मैं तेज लगती हूँ आपको. ये मैंने अपने हर बॉयफ्रेंड के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है, एंड दिस इज माई पर्सनल प्रोफेशनल थ्योरी नंबर 464. अगर अपने बॉयफ्रेंड की मम्मी पापा को इम्प्रेस करना चाहते हो सलवार कमीज पहन लो, अगर उससे भी ज्यादा इम्प्रेस करना चाहते हो कि जिस दिन पहली बार मिल रहे हैं वापस रोका करके ही आएंगे तो साड़ी पहनकर चले जाओ. इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, आई एम टेलिंग यू दिस. और अगर आप मुझसे अग्री करते हो, आई डोंट नो इफ दिस इज अप्रोप्रिएट, नहीं मुझसे अग्री करते हो, आई डोंट नो, लेकिन इफ यू अग्री विद मी एंड आई नो दैट यू डू, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट दिस. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है RochiE, एंड नो आई एम नॉट बीइंग रिग्रेसिव, आई एम जस्ट सेइंग इट लाइक इट इज, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Zindagi mein na, the hardest confession ever to make is when you are in love with the same sex person aur ab aap apni family ko bataoge kaise. Agar aapne apni zindagi mein aisa confession nahi kiya hai and you want to come out of the closet on radio, to let me tell you ki time ho gaya hai for
2: The Secret Box.
1: और अगर आपका कोई भी प्राइड रिलेटेड कन्फेशन है, देन आई हैव ऑल द नॉन जजमेंटल इयर्स टू हियर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप विद योर कन्फेशन एंड आई विल कॉल यू. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू नॉटी बॉय?
3: बढ़िया.
1: बढ़िया तो आप काफी हो. आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर भेजा था फेसबुक पर, आई वॉज लाइक दिस इज अ गाय आई वॉन्ट टू टॉक टू. सो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. नाउ आई एम जस्ट हैंडिंग दिस ओवर टू यू. ठीक है,
3: मतलब मैं कैसे बताऊँ. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड मी लूजिंग माय वर्जिनिटी.
1: ओके.
3: आई डिड लूज इट टू माय कजन.
1: योर कजन? ओके, बट ये कहानी यही खत्म नहीं होती है क्योंकि Why don't you tell me more about it?
3: So my first sexual encounter was A with a male, B with my own cousin. Or when we were making out for the first time, so our parents came in there.
1: Oh wow! This is so crazy. पहले तो घर का cousin जो technically आपका भाई है, ऊपर से आप और आपका भाई, ऊपर से आपके मम्मी पापा आ जाते हैं.
3: But we were teenagers, so they also thought ki bachpana hai and everything.
1: Huh.
3: And they just let it pass.
1: Huh.
3: But the thing is, the main confession here is that it did not end there. And we continued to be in a skewed relationship sort of a thing.
1: It's not skewed at all. I mean, meri jo ex-best friend thi school mein, usse apne chacha ji ke bete se pyar ho gaya tha. So, like... प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है. प्यार तो अंधा होता है पुष्पा.
3: आई विश वो प्यार होता.
1: तो ठीक है यार, एटलीस्ट नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव. करेक्ट.
3: या
1: बट सो डज दैट मीन दैट यू आर नाउ अ होमोसेक्सुअल और बाई क्यूरियस या बाई सेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल?
3: आई थिंक आई एम अ बाई सेक्सुअल. आई हैव बीन इन रिलेशनशिप विद वुमेन एंड एज आई टोल्ड यू विद मेन ऑल्सो. So I find myself bisexual.
1: Just for the fact that you were honest enough to make this confession, क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
3: Please do it.
1: There you go, my darling.
4: You've been roshified.
1: I hope ki you have a great Pride Month ahead of you. And aapke to chances double ho jate hain na for a date because you are bisexual. So it's also girls and also guys. And genuinely, all the best to you, yeah.
3: Yeah, and twice the amount of rejection I face. So
1: oh, yeah, God, don't say that, you pessimist. It's twice the amount of date chances. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही है एक कन्फेशन लाइक माय मिस्ट्री कॉलर, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Bam. Bam. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्ची के साथ. अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: बदल गया।
1: रखू ना बिब कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिंदगी में बोर्डम हो रही है, रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब वो एक्साइटिंग नहीं लगता है. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी फन दैट यू गाइस कैन ट्राई टुगेदर. ओके, सो नाउ हियर्स द थिंग, आप अपने क्रश के साथ भी ट्राई कर सकते हो एंड देन इट विल टर्न क्वाइट स्टीमी, आई प्रॉमिस. बट अगर आप में वो एडवेंचरस स्पिरिट है, वाई नॉट. इसे कहते हैं द मोस्ट अमेजिंग गेम दैट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद, दैट्स नॉट द नेम ऑफ द गेम. इसे कहते हैं द एफ्रोडीसियाक ब्लाइंड टेस्ट. तो इसके लिए आपको प्रॉप्स चाहिए होंगे, ठीक है. एफ्रोडीसियाक्स का मतलब वो खाने जो पुट यू इन द मूड फॉर लव. तो आपको लेकर आना है द यूजुअल फिग्स, स्ट्रॉबेरीज, डार्क चॉकलेट, एनी अदर काइंड ऑफ, वाटरमेलन भी माना जाता है एक एफ्रोडीसियाक है. यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट. यू कैन ऑल्सो गेट अ ग्लास ऑफ गरम मिल्क विद सैफ्रन इन इट, बिकॉज सैफ्रन भी एफ्रोडीसियाक है. द अदर प्रॉप दैट यू नीड इज प्रेफरेबली अ सैटिन का ब्लाइंड फोल्ड. अब आप अपने पार्टनर को या अपने क्रश को या फ्रेंड को, हु यू वांट टू टर्न इनटू अ पार्टनर, उसे ब्लाइंड फोल्ड करते हो इस सिल्क ब्लाइंड फोल्ड से एंड देन यू ले आउट दिस एफ्रोडीसियाक्स. और अब आपके पार्टनर को गेस करना है व्हाट इज द थिंग दैट यू आर पुटिंग इन देयर माउथ. यू आर सच अ नॉटी पर्सन, नाउ दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच. नाउ टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस गेम. और वो बताने के लिए यू हैव टू फाइंड मी ऑन द ग्राम या ऑन फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, जानो मानो, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: थर्ड व्हीलिंग अर्थात कि एक डेट पर जहाँ एक लड़का और लड़की है वहाँ पर एक तीसरा इंसान भी प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे आपके साथ कितनी बार हुआ है जिंदगी में कि आप डेट पर जा रहे हो साथ में आपका छोटा काका कजन भी साथ में आ जाता है एंड दैट जस्ट किल्स द वाइब। इफ इट्स एवर हैपेंड टू यू आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टू टेल मी अबाउट हर थर्ड व्हीलिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ लाइन पर अर्चना है। हाय अर्चना।
2: हाय रोशी।
1: जीवन में आपसे बात करते समय मेरे जिंदगी में कोई ना आए अर्चना अर्चना कितने गंदे गंदे गंदे गंदे जोक्स क्रैक करती हूँ बट
2: नहीं यू कैन डू इट
1: आई कैन थैंक यू वेरी मच यू आर वेरी काइंड। आप जो ऐसे खिलखिला के हंस रहे हो आपके जीवन में हो क्या रहा है?
2: ओके मैं खिलखिला के हंस तो रही हूँ पर मेरे जीवन में बहुत भसड़ मची हुई है। और सो व्हाट हैपेंड, मेरी फ्रेंड एक बंदे को डेट कर रही है तो वो पिछले एक डेढ़ साल से डेट कर रहे हैं ठीक है। तो उनके रिलेशनशिप की मैं थर्ड व्हील हूँ यू नो मैं right. जब से वो प्रपोज करना चाहते थे रिलेशनशिप में आए उनके एन नंबर ऑफ फाइट्स में आई हैव बीन पार्ट आई हैव बीन द कम्युनिकेशन ब्रिज यू नो कि उसकी बात उसको बताना उसकी बात उसको बताना उन दोनों का सॉर्ट आउट कराना एवरीथिंग बट द कैच हियर इज कि इन सबको करते करते ना आई बीन अट्रैक्टेड टू द गाय बिकॉज ही इज सच अ नाइस गाय एंड माई फ्रेंड ऑनेस्टली शी इज माई फ्रेंड बट शी इज you know, she doesn't deserve him. वो बेचारा उसके लिए सब कुछ करता है और वो भाव तक नहीं देती है मतलब लाइक एवरी टाइम शी वॉन्ट सम प्रॉब्लम कि वो उसको मनाए वो बेचारा 24 घंटे उसको मनाता रहता है और मतलब मैं भी मनाती रहती हूँ मतलब हम दो लोग उस बंदी को मनाते रहते हैं कि यार ठीक है और मुझे इतना बुरा लगता है उसके लिए आई थिंक समवेयर सिंपैथी समवेयर द वे ही केयर्स फॉर हर जिस तरह से वो उसको प्यार करता है वो सब चीजें देख के मुझे लगता है यार कि दिस गाय डिजर्व्स बेस्ट।
1: तो या इस गाय को भी ये लगता है दैट ही डिजर्व्स द बेस्ट एंड यू अर्चना आर द बेस्ट?
2: मतलब देयर हैव बीन कपल ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैड सच डिस्कशंस यू नो डीप डिस्कशंस ऑब्वियसली ये नहीं था कि दैट ही वांट्स टू डेट समबडी एल्स बट ये था कि यार ही डिजर्व्स बेटर ही डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड बेटर एंड आई थिंक अगर मेरी फ्रेंड के साथ वो लड़का ऐसा होता तो आई वुड हैव फेल्ट द सेम वे फॉर माई फ्रेंड यू नो और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ये बात बताऊँ Because I know I will never treat him like this.
1: तो आपने इस जो सेटअप में राजश्री प्रोडक्शन जो आपके दिमाग में चल रही है उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि जब आप इस बंदे को बोलोगे कि यू डिजर्व बेटर एंड आई एम बेटर कम हियर किसी किसी तो वो आपको बोलेगा या किसी किसी कौन है तू गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड बन जा यू थिंक इट विल मैजिकली वर्क आउट लाइक दैट?
2: नहीं आई एम श्योर इट विल नॉट एंड इट विल नॉट कम इन अ वेरी इजी वे। देखो दो ही मुझे ऐसा लगता है दो ही चीजें होंगी या तो वो हाँ कर देगा या वो ना कर देगा
1: और बीच में आपने यही सोचा
2: मैं नहीं बोलूंगी ना आई विल बी किल्ड बाय माय सेल्फ कि यार मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल दिस गाय।
1: तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने इस बंदे को बता दिया और बंदे ने कहा कि क्या बोल रही है यार मैं तो तुझे बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और आपकी ये जो बेस्ट फ्रेंड है ये आपकी एक्स बेस्ट फ्रेंड
2: उससे पहले आप ही मेरा दिल तोड़ रहे हो डोंट से दैट
1: I mean, I'm just saying, worst case situation. Okay, let me be really honest. कि आपकी friendship with this girl will be on the line. जैसे ही आपने अपने feelings express किए to this gentleman in question. Are you fine with the fact that you will?
2: यार उसको तो बहुत मिल जाएंगे अभी उम्र ही क्या है हम लोगों की मेरे को थोड़ी रोज रोज प्यार हो रहा है किसी से एक साल हो गया नहीं बोला तब से
1: क्या बात है यार प्यार ऐसे ढीट होता है मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर आपके प्यार में ऐसे ढीट

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तो मैं स्कूल में थी एंड मुझे पता भी नहीं था कि अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ डू यू टेल दैट पर्सन, एंड बिफोर आई कुड एंड अप डूइंग एनी ऑफ दैट उसकी शादी उसके मम्मी पापा ने किसी और के साथ फिक्स कर दी एंड बिफोर आई कुड इवन अंडरस्टैंड माई लव हार्ट ब्रेक वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. लेकिन ये इतना ड्रामेटिक था, दैट्स नॉट इनफ. हाउ आई डेल्ट विद अ हार्ट ब्रेक वॉज इवन मोर ड्रामेटिक. मैं जाकर लेकर आई एक बड़ा डब्बा पेंट्स का और मैंने पूरी दीवार पर, चारों दीवार मतलब मेरे कमरे में जितनी दीवारें थी, और फिर फाइनली एक लैडर लेकर सीलिंग पर भी उसका जगह जगह नाम लिख दिया, टू द पॉइंट वेयर माई मॉम एंड डैड रिफ्यूज टू कम इन टू द रूम बिकॉज दे थॉट कि मैंने उसे एक हार्ट ब्रेक का म्यूजियम बना लिया है. ये तो मेरी लव स्टोरी / हार्ट ब्रेक स्टोरी थी. But whatever is your heartbreak story, that's what I'm interested in, Morning Glory. और उसे बताने के लिए, let's just compare notes नहीं, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do what you need to do. I will not break your heart. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Zindagi mein na, the hardest confession ever to make is when you are in love with a same-sex person aur ab aap apni family ko bataoge kaise. Agar aapne apni zindagi mein aisa confession nahi kiya hai and you want to come out of the closet on radio, to let me tell you ki time ho gaya hai for...
2: The Secret Box.
1: और अगर आपका कोई भी प्राइड रिलेटेड कन्फेशन है, देन आई हैव ऑल द नॉन जजमेंटल इयर्स टू हियर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप विद योर कन्फेशन एंड आई विल कॉल यू. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू नॉटी बॉय?
3: बढ़िया.
1: बढ़िया तो आप काफी हो. आपने मुझे जब अपना कन्फेशन लिखकर भेजा था फेसबुक पर, आई वॉज लाइक दिस इज अ गाय आई वॉन्ट टू टॉक टू. सो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. नाउ आई एम जस्ट हैंडिंग दिस ओवर टू यू. ठीक है,
3: मतलब मैं कैसे बताऊँ? सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड मी लूजिंग माय वर्जिनिटी.
1: ओके.
3: आई डिड लूज इट टू माय कजन.
1: योर कजन? ओके, बट ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि why don't you tell me more about it?
3: So my first sexual encounter was A with a male, B with my own cousin, or when we were making out for the first time.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

I was watching this movie called No Strings Attached, okay? And ye dono bande date par jaate hain on Valentine's Day. And ek to I'm in love with Natalie Portman. But Natalie Portman apne bande ke liye ek handmade card banati hai. And when I saw that scene, I was like, this is so gooey and it is so cute. Even in 2020, there is nothing more romantic than a handmade card. अगर आपने 2020 में अपने पार्टनर के लिए एक हैंडमेड कार्ड नहीं बनाया या अपने हाथों से एक लव लेटर नहीं लिखी है, माई सजेशन इज़ यू टोटली हैव टू ट्राई इट. आई एम टेलिंग यू, जिस रेट पे मुझे गूज़बम्स हुए थे ना वो देख के. और किसी के लिए आप लव लेटर लिखो या ना लिखो, किसी के लिए कार्ड बनाओ या ना बनाओ, मेरे लिए ज़रूर बना दो एंड आई बी सो हैप्पी टू रिसीव इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है प्यार करना, स्पेशली आपसे. एंड आई बिलीव जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोट्स.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं. कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंड ट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं. उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं. ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं.

तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ही गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस सॉन्ग लास्ट वीक, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है।

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17। दृश्यों के बाहर नजरों को डाल, संभल कर चलना और खुद को

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 12.

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है। देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है। बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहां इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 5।

0: कुछ फिल्ममेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूव तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीजें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी के हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड ऑल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड ऑल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM

वारू, नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो गहने और वो घोड़े स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 yet again। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath only on Mirchi, it's hot.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रजिया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था, एक्चुअली ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहां के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा, जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई, तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है, तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूं श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब के आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची।

0: It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
0: Radio Mirchi, it's hot.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुनकर के वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सुस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: किसी से प्यार किया?
6: किया।
5: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Together.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हम अनजाने में गलत चीजों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये हमने हाईवे फिल्म में भी देखा था, जहाँ पे आलिया भट्ट को ना अपने पुराने बचपन में हुए जो शोषण होते हैं उसके बारे में याद आती है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाती है। और मेरा सवाल यही था कि सामना करना एक बात है और सहन करना एक बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि परिवार को बिखरने से हमें ज्यादा डर लगता है, लेकिन हर सदस्य की जो भलाई है और सुरक्षा है उस पे फोकस नहीं होता? ये इस बात पे क्यों टिके रहते हैं?
4: सी, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ किसी मोमेंट पर, लेकिन हम बहुत बाद में उस चीज को कन्फ्रंट करते हैं। तब तक हम उसको अंदर ही अंदर, जैसे वो बीज है, अब वो है तो गलत बीज ना,
3: लेकिन उसको पानी देते रहते हैं,
4: तो वो नफरत और रिवेंज के अंदर बदल जाती है। हमें किनारा करना होता है किसी एक व्यक्ति से, कई बार किनारा करना पड़ता है
3: जी, बिल्कुल,
4: लेकिन अंदर जब रिवेंज, बिटरनेस सब हो जाता है तो

0: तो हमें लगता है सारा परिवार ही दोषी है, परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और कई बार ये सच भी होता है, जो हमने पहले भी कहा कि बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज क्या कहेगा। और फिर ये जो हम कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग,
1: क्या कहेंगे लोग,
0: ये रोग है, डिजीज टू प्लीज। मना हम समाज में रहते हैं और समाज के जो नियम है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके, बच्चों की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके गलत को सहन करना क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट करे, वो चीज राइट नहीं है। तो आपके साथ कुछ होता है, आप कन्फ्रंट करें। होता क्या है, हम बोलते नहीं है लेकिन उसको अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं। जितनी बार सोचते हैं, रिलिव करते हैं, उतनी बार उसका ब्लेम किसी दूसरे पर डालते हैं। पेरेंट्स ने मुझे बचाया नहीं, पेरेंट्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, उनको भी पता ही नहीं होता है।
1: सही बात।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: एम आई कंफर्टेबल? ये सवाल क्यों सेल्फ अवेयरनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, आइए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, हैदराबाद में ना एक महिला बैंकर हैं, पहले एचआर प्रोफेशनल थी, तो वो किसी अखबार में शायद मैंने पढ़ा था इस बारे में, तो उनकी पिताजी की मौत हो गई थी. उसके बाद वो लिखती हैं कि मेरी एक और बहन है और हम दोनों को हमारी माँ ने अकेला ही पाल पोस के बड़ा किया, तो कृतज्ञ बहुत हैं, लेकिन अब कमाने वाली मैं ही हूँ. महिला बैंकर है, लिखती हैं कि माँ ने पाल पोस के तो बड़ा किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे एक लड़का पसंद आने लगा, लेकिन मम्मी को उससे थोड़ी सी वो होने लगी कि भाई अब तो एकमात्र जो साधन है कमाने का वो कहीं नहीं चला जाए. तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने उसकी छोटी बहन से उस लड़के की शादी कर दी. तो इससे ये जो महिला बैंकर, इनको बहुत गुस्सा आया और वो बिल्कुल उसने किनारा कर लिया, घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, शहर भी जो है वो शिफ्ट कर लिया, दूसरे शहर में जाके रहने लगी, और अब अपनी माँ को एक रकम भेज देती हैं घर खर्च के लिए, और अपने सारे रिश्ते जो उसने तोड़ लिए. इस केस में कौन सही है कौन गलत है उस पर हम नहीं जाना चाहते. उनको बहुत इस पर बैकलैश मिला, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर छोड़ के जाना और एक स्वतंत्र जीवन चुनना, उसे स्वार्थी क्यों माना जाता है?
4: देखो, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें हम सही गलत नहीं कह सकते. अगर कोई इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, उसको कम्फर्टेबल है, और वो अगर उसकी चॉइस है, सो इट इज ओके. पर आप कहें कि सब उस चीज को एक्सेप्ट करें, बैकलैश का मतलब क्या है कि कई लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. जब भी हमारे समाज में कोई चीज पहली बार होती है, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होती, हमारे को वो चीज राइट नहीं लगती, तो बैकलैश तो आजकल सोसाइटी में, पहले तो कम्युनिटी से होता था, आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कंट्री से उस कंट्री से अनोनिमसली सब करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं, आर यू कम्फर्टेबल, आपको ठीक लगता है. When you do right, there is always peace after that. ये तरीका मेरा है find out करने का. कई बार हम कुछ कर लेते हैं पर अंदर से comfortable नहीं
3: होते, हाँ.
4: दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, bitterness है, नफरत है, कोस रहे हैं, complain कर रहे हैं, तो फिर आप ही comfortable नहीं है उस चीज से. उस समय पर सोचना है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है या कुछ और करना है. अपने decisions उस पर बेस नहीं करने के बाकी सब क्या सोच रहे हैं, पर क्या वो मुझे comfortable है, am I feeling peaceful, am I comfortable, वो देखना ज्यादा जरूरी है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खुद को हर बार प्रूफ करना क्यों जरूरी नहीं होता और साइलेंस का पावर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस केस में तो महिला ने लिख के भी भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इस वजह से मैं अलग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी है या माँ जो है एक तरह से शायद उनके साथ गलत हुआ इसलिए उन्होंने ये करने की कोशिश की। तो हमें एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ता है कि हमने ये काम किया, हम अलग हुए अपने परिवार से और हम इन पीड़ाओं से गुजर रहे थे।
4: हम एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें एक्सेप्ट करे। एक्सप्लेनेशन देने में भी कोई हर्जा नहीं है, हर्जा
3: लेकिन
4: होता
3: जीना
4: है।
3: मुश्किल कर देते हैं ना कहीं रोज बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा हो, तुमने छोड़ दिया अपने परिवार को, तुमको अपनी माँ की चिंता नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो आदमी को लगता है यार मुझे थोड़ा यहाँ पे शांति भी चाहिए।
4: सी देखो, एक्सप्लेनेशन देने में कोई हर्जा नहीं है, पर सिद्ध नहीं करना चाहिए। सिद्ध और जिद करने में ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। जब हम बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं ना, वी कीप ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्फ, वी डोंट नीड टू रियली प्रूव आवरसेल्फ। देखिए, कुछ भी आप समाज में जब कुछ नया होता है ना हट करके, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़े समय के बाद सफल हो जाता है, जिसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, वो सफल हो जाता है, फिर वही लोग जो रिजेक्ट करते थे, वही लोग जो इंसल्ट करते थे, वही लोग जो कुछ कुछ कहते थे, वही आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, वही आपको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस हर समय उस बेस पर नहीं ले सकते कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो राइट है कि नहीं। अगेन, दो चीजें हैं, एक है आप वो कर रहे हैं जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस है, पर हो सकता है वो राइट ही नहीं है। हम आज अल्कोहल लेते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, वाह करते हैं, इट इज अ वेरी, बट वो चीज ही राइट नहीं है। वो चीज ही राइट नहीं है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। और एक है कि अकेला खड़ा होना पड़ता है, मैं अकेला, हाँ, सबके खिलाफ, बट मुझे पता है कि मेरा कर्म सही है, एंड इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन, इट्स ओके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली।
5: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या कभी कभी फैमिली से डिस्टेंस बनाना गलत होता है या ये भी हीलिंग का एक हिस्सा हो सकता है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे आपसे यही बात पूछनी थी कि इज इट अ सिन टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली अगर मैं अलग हो रहा, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत लगती है। अपने परिवार का जो पूरा सेटअप है, कंफर्ट है, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारा हमको वहाँ पे शेल्टर करते हैं, वो पूरा सेटअप छोड़ के अलग रहना, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार हमें स्वार्थी गुनहगार भी ठहरा दिया जाता है कि तुमने अपने परिवार को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, प्रेशर बहुत रहता है। तो एक तरह आप कह रही हैं कि देखो, परिवार के लिए समाज क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सही लग रहा है या नहीं वो हमें सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है ना कि शायद हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर निकलना जरूरी है, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम उनको छोड़ के आए। तो क्या इतना गलत है ये?
4: इंटेंट देखना पड़ता है। आज एक आर्मी वाला है, वो भी तो छोड़कर जाता है अपने पेरेंट्स को,
3: उसकी स्थिति अलग है।
4: वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज देखनी पड़ती है ना, कि उस समय पर जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो हम किस लिए छोड़ रहे हैं? हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं? एक आंसर हर जगह फिट इन नहीं होगा। एक है कि परिवार है तो परिवार में रोल तो होता है। आज बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपका फर्ज भी होता है उनका ध्यान रखना। पर कभी कभी सिनारियो अलग होते हैं, जैसे अब ये मिलिट्री का सिनारियो है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब के कारण आपको कहीं जाना पड़ता है, आप एक्टर हैं, आपको उतने दिन जाना पड़ता है, तो आप फिर ये सोचते हैं, उसमें गिल्ट में जाने के जगह ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हर बार वो पॉसिबल भी नहीं होता सिनारियो, हम चाहें उनके साथ रह लें। आज आप देखें, कई बार हम देखते हैं कि वही पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे बहुत मेहनत करके, क्योंकि पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनको जो नौकरी मिलती है वो मिलती है उनको मेट्रो सिटीज में है या विदेश में मिलती है। अब पेरेंट्स ने तो पढ़ाया था ना, उन्होंने भी मेहनत करके पढ़ा, अब उनको अगर एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्यों नहीं लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को। तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जहाँ इंटेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे का भाव नहीं है पेरेंट्स को छोड़ना, दोनों में फर्क है। एक है आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट वॉन्ट टू टेक केयर, अब मैं, मुझे आपकी कोई फिक्र भी नहीं है और मैं आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहता। और एक है कि ये सर्कमस्टेंस है, इस समय पर ये सिनारियो है, इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या उनको अपने पास बुला सकते हैं, कोई केयर टेकर रख सकते हैं। उसमें हमारे मन में उनके प्रति कुछ नहीं होता, केवल एक्सटर्नल चैलेंज होता है। और कई बार तो हम घर में ही इकट्ठे होते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां हैं। मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां नहीं है ना, तो कई बार दूर रह करके भी आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
2: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा।
1: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर होना क्यों कंफ्यूजन को कम करता है और क्लैरिटी लाता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है कि मैं कलकत्ते में था, मेरे माता पिता कलकत्ते में रहते थे और मुझे कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, मैं दिल्ली गया और फिर एक समय पे मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं, तो मैंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए मैं वापस कलकत्ते जा रहा हूँ, और मेरे सीईओ ने कहा ठीक है भाई तुम आ जाओ, लेकिन उसके 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने कहा कि अब तुमको बम्बई आना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों तक उसको टालता रहा लेकिन आना पड़ा। मैंने अपनी माँ से भी बात की तो माँ ने कहा कि तो चले जाओ, और मेरे बहुत अच्छे बॉस थे, उन्होंने कहा देखो अभी तो माँ की हालत ठीक है तुम आ जाओ। मैं बम्बई आ गया और आने के 2 साल बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया। अब वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं अगर कलकत्ते में रहता, उनके पास रहता, उनके आखिरी दिनों में सेवा कर पाता, और ये कई लोगों के साथ होता है, कई परिवारों के साथ होता है, ये गिल्ट ज्यादा नहीं कि मैं छोड़ के निकल आया, उनके भाव में उनकी तरफ से शायद ऐसा ना रहा होगा, उन्होंने अपने बड़े प्यार से भेजा, मैं जाता था भी रहता था, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं

0: रह पाना, ये गिल्ट हमेशा रहता है। तो आपको एक जिंदगी चुननी भी है, आपको अपना परिवार का ख्याल भी रखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, और कहीं ना कहीं ये गिल्ट ना हो कि आप परिवार वालों के साथ तब ना रहे जब वो उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसका संतुलन कैसे बनाए?
1: देखिए, किसी ने शरीर छोड़ना वो तो निश्चित होता है ना, डेथ और बर्थ। तो आप इधर थे और उसके पीछे से उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी ये बात कि हम उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हर एक की पर्सनल चॉइस है। उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। आप आ गए तो भी कुछ गलत नहीं है, पर अगर आप नहीं आते और थोड़ा समय और उनके साथ स्पेंड करते तो भी गलत नहीं था। प्रायोरिटी, कईयों के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि उनकी जिम्मेवारी है और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बच्चे हैं, परिवार को चलाना है, उतना धन कमाना है, उसके लिए ऑप्शन नहीं था, आना ही था। किसी के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि नहीं, मैंने भले अभी इस समय मुझे धन नहीं है मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे तो इनके साथ ही समय बिताना है, नहीं तो मुझे रिग्रेट रहेगा लाइफ में। मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे अपना ये समय उनके साथ ही बिताना है। इवन इफ आई अर्न लिटिल लेस इन दीज फ्यू ईयर्स, इट इज ओके, मनी इज नॉट राइट नाउ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्या मेरी प्रायोरिटी है उस समय पर, उस सीन में, उस सिनारियों में क्या मेरी जिम्मेवारी है, उसको देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं वो मेरी चॉइस है, उसमें ये फायदा था इसलिए मैंने ये चूज किया, और फिर ऐसे अपने से बात करके अपने को हल्का करना चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन।
3: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
4: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
5: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
6: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
5: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
6: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
3: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
7: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
8: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
9: Yes, only at Indo American Festival INC,
10: 28th Dasara Festival on Saturday 10th October
9: at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
7: Join us for marvelous Ramlila, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
11: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
16: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
15: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं तो इसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है. ये शिफ्ट कैसे आता है आइए मिलकर जानते हैं.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
5: सिस्टर कहते हैं कि हाइंडसाइट में सब सही लगता है, तो उस समय मैंने डिसीजन लिया और उस समय मुझे सही लगा हमने किया. लेकिन कई बार आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन उस समय नहीं लिया होता या ये डिसीजन ले लिया होता, तब दिक्कत होती है. दिक्कत वरना नहीं होती. अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती.
6: हमें से कोई भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, और हमें से कोई भी नहीं है जिसने सारे डिसीजन राइट लिए. We're all work in progress. उस समय जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमें बिल्कुल राइट लग रहा होता है. हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल इमोशनल कैपेसिटी है, हम वो डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि हमें गलत लग रहा है और हम ले रहे हैं. हमें वो सच में जेन्युइनली राइट लग रहा होता है. बाद में अगर हमें लगता है कि वो राइट नहीं है, मे बी नाउ शायद आपके मदर के साथ ऐसा हुआ, आपके फादर के साथ आप डिफरेंटली कोई डिसीजन चूज करते हैं, इट इज ओके. व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर. लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम ना. हम उस चीज में, और कई बार ऐसा होगा कोई ब्लेम नहीं कर रहा है,
5: लेकिन मन में वो बात चल रही है.
6: वो हम कर रहे हैं क्योंकि शायद हमारे मन में या दिल थी कि आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माय फैमिली. अगर आपको ऐसा लगता है और आपने रियलाइज किया कि इस चीज का एक रिग्रेट आपके मन में रह जाता है, सो मे बी विद द अदर पेरेंट वो चीज आप रिपीट नहीं करें. विद द अदर पेरेंट आपके पास फिर चॉइस है कि आप कितना समय उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं. ये रिग्रेट कईयों के मन में रह जाती है. लेकिन अगेन आई विल से कि हर एक के पास वो ऑप्शन नहीं होता. तो क्या कर सकते हैं? रोज फोन पर बात कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं. उनको कह सकते हैं कि आप कभी भी हमें फोन करें, आपको लगता है कि उनको हमारी जरूरत है, तो काम छोड़ करके भी जाकर के उनको प्रायोरिटी बना सकते हैं. व्हाट इज पॉसिबल? समटाइम्स जो पॉसिबल है वो भी नहीं करते, उसका गिल्ट ज्यादा होता है. वो फोन उठा सकते थे पर नहीं उठाया. दो दिन की छुट्टी ले सकते थे पर नहीं ली. थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा बात कर सकते थे. समटाइम्स पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं, रिपीटेड भी वही बात करते हैं. उनका फोन देखकर ही आपको पता होता है वो क्या बात करने वाले हैं. आप एक बात उनको कई बार समझाते हैं, वो बच्चे जैसा हो जाते हैं. हम बच्चे थे तो हम भी तो एक ही बात बार बार करते थे, तो वो कितने प्यार से एक ही बात सुनते थे और एक ही बात हमको समझाते थे. आज वो बच्चे बन गए. अगर एक ही बात वो 50 बार भी करते हैं और अगर हम सुन लेते हैं और एक्नॉलेज कर लेते हैं, एंड दे फील दैट कोई मुझे सुनता है, कोई है मेरा अपना, तो ये भी तो सेवा है ना. फिजिकली होना सेवा नहीं है, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट होना भी अपने आप में सेवा है.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मुक्ति हैं वो लिखती हैं कि भक्ति योग की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, रोज जप करने का सोचती हूँ पर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। जब सब कुछ समझ में आता है तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाती, और क्या अभी भी जागरूकता मेरे अंदर कम है? अंदर ऐसा क्या है जो जाग नहीं पा रहा?
3: लगन की कमी है
2: जी।
3: जब किसी चीज के प्रति आपको बहुत लगन होती है तो आप वेट करते हैं वो करने के लिए, तो केवल समझ काफी नहीं होती कई बार। वो जब किसी चीज की लगन लग जाती है ना, तो फिर आपको दिल होती है करने की, मजबूरी से नहीं आप करते, आप उस चीज को दिल से करते हैं। और इसीलिए जब वो लगन लगने के लिए थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो इनिशियली अगर हम कुछ भी करते हैं, सो सेट अ वेरी स्मॉल गोल फॉर योरसेल्फ,
2: राइट,
3: क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देगा। मे बी आप 1 वीक का गोल सेट करें कि मुझे 1 वीक में एवरी डे 1 आवर के लिए करना है, और करना ही है। उसमें आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बहुत लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो कई बार मुश्किल लगता है। जस्ट डू इट फॉर 1 वीक और उसमें कैसे भी मुझे करना ही है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा,
2: राइट, और उससे आदत बनेगी। और जरूरी नहीं कि एक हफ्ते
3: उससे आपको दिल होगी, आदत तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपको मोटिवेट करेगा।
2: फिर एक
3: जैसे हम एक्सरसाइज के लिए सोचते हैं करेंगे, हम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, हम करेंगे करेंगे करेंगे, होता नहीं है। फिर देन समटाइम्स वी थिंक कि नहीं, 1 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ 1 मंथ करके देखते हैं, रिजल्ट आता है, यू फील फ्लेक्सिबल, यू फील लाइट, यू फील कंफर्टेबल, देन यू वांट टू कंटिन्यू,
2: राइट।
3: तो जब तक आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लगन बैठती नहीं है।
2: जो छोटे छोटे स्टेप्स में करिए, हफ्ते भर में, एक घंटा नहीं तो 20 मिनट तो बैठिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो करोगे।
3: देखो ये हर चीज में होता है। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं हम सुबह उठना चाहते हैं, हम उठते भी हैं पर हमारे से होता नहीं है। आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हैं जो आप पहले नहीं करते थे, वो डिफिकल्टी होती है, वो एकदम नहीं होगी। गिव अप नहीं करना होता। इफ यू नो दिस इज राइट, आपको पता है ये सही है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्राप्ति है, वो टेस्टेड है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे, पहले डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी हो जाएगा, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाएगा।
2: बहुत अच्छी बात है। मुक्ति जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। तो बस ये याद रखिए और आगे बढ़िए
3: जी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे देसी लोग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। और आज का रिमाइंडर है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना फ्री डिलीवरी पर आती है, तो एटलीस्ट सुबह सुबह का एंटरटेनमेंट जो है वो ऑसम होना चाहिए। सो वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, पैकिंग योर टिफिन, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर सिटिंग इन अ मीटिंग थिंकिंग यार ये मीटिंग ईमेल भी तो हो सकती थी, आई हैव गॉट यू। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। आज का प्लान काफी सिंपल है, थोड़े से बॉलीवुड बैंगर्स सुनने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, यहाँ वहाँ की अपडेट्स मैं तुम्हें देने वाली हूँ, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें तुम्हें देने वाली हूँ, थोड़ा सा न्यूज, थोड़ी सी गॉसिप, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, और वो देसी मिर्च मसाला जो घर से 8000 माइल्स दूर रहकर भी तुम्हें घर के जैसा फील कराता है। एंड हे, डोंट जस्ट लिसन टू मी, टॉक टू मी एज वेल। व्हाट्सएप कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर, या फिर तो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी डीएम कर सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट भी है, थोड़ी सी देर में उसके बारे में बताती हूँ। सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग, सुनते रहो मुझे, एंड ऑफ कोर्स कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: यू आर लिसनिंग टू द MPZ लॉ फर्म शो। Immigration bows, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
7: Nine Nights, One Divine Spirit.
8: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
7: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 PM.
8: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
7: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: मिर्ची फ्रेश माल।
16: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और पता करते हैं आज के दिन यानी कि 7th of October को क्या हुआ था। 1571 में बैटल ऑफ लिपांटो यानी कि एक कैथलिक अलायंस डिफीटेड द ऑटोमन फ्लीट, बेसिकली मेडिटेरेनियन में फुल ऑन नेवल शो डाउन हुआ था। 1765 में न्यूयॉर्क में स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हुआ, जहां पर 9 अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिश टैक्सेशन के अगेंस्ट एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट प्लान किया। 1913 में फोर्ड ने मूविंग असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस की, कार्स बनाना सडनली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट हो गया। हेनरी फोर्ड जो है उन्होंने बेसिकली कहा कि लेट्स स्टॉप मेकिंग कार्स वन बाय वन गाइस। 1949 में ईस्ट जर्मनी ऑफिशियली फॉर्म्ड अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस। 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने मून के फार साइड की फर्स्ट एवर फोटोग्राफ्स भेजी। एंड देन 2001 में द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान। फिर आया 2023, हमास लेड मिलिटेंट्स लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन सदर्न इजराइल, किलिंग अराउंड 1200 पीपल एंड टेकिंग मोर देन 250 हॉस्टेजेस, ट्रिगरिंग द डेविस्टेटिंग इजराइल हमास वॉर इन रीसेंट टाइम्स। ये डीपली ट्रेजिक चैप्टर था with consequences that continue to be felt till date. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द craftyhands.com और कॉल 7323970057.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है.
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
11: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार.
12: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना.
13: Yes, only at Indo American Festival INC.
14: 28th Dasera Festival on Saturday 10th October
13: at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
11: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
1: For details call 732-444-8381 or visit dasera.com.
15: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने.
16: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
17: अरे कहना क्या चाहते हो?
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid-fire questions presented by Virani Jewelers
6: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22-carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
18: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
16: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
20: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है.
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए for your 9 rapid-fire questions presented by Virani Jewelers
6: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22-carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
21: Tera kya hoga Kalia?
22: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
21: Ab mirchi kha.
23: Radio Mirchi, it's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो,
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
4: होगा कालिया।
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi gang. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And now let's check on Mirchi Mornings की आज वेदर का क्या हाल चाल है. Because before you step out wardrobe का sweater या t-shirt ये decide करना तो बनता है. Right now we are sitting at around 43 degrees Fahrenheit. It's feeling closer to 44 degrees Fahrenheit and it's mostly sunny. Daytime में sunshine जो है it stays on with temperatures climbing up to around 68 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. So हाँ, एक jacket लेकर जाना बनता है साथ में. लेकिन please वो कनाडा के लेवल का विंटर जैकेट नहीं लेकर जाना है. नो पार्का स्टाइल जैकेट, सिर्फ एक हल्का पुल्का सा जैकेट साथ में लेकर जाना. विंड जो है वो प्रिटी चिल है, साउथ वेस्ट से आ रहे हैं अराउंड 5 to 10 माइल्स पर आवर. एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट जीरो चांस ऑफ रेन टुडे ऑल्सो, सो योर अम्ब्रेला कैन एंजॉय वेल डिजर्व डे ऑफ टुडे एज वेल. टुनाइट स्काइज स्टे मोस्टली क्लियर एंड टेम्परेचर डिप टू अराउंड 51 टू 53 डिग्रीज फारेनहाइट विद लाइट सदर्न वेस्टर्ली विंड्स. सनराइज वॉज अराउंड 7 AM and sunset is around 6:29 PM. So you've got plenty of daylight to enjoy that gorgeous fall vibe. Basically, aaj ka tapman is giving very good hair day, very good weather day. Bas traffic ka koi bharosa nahi hai. Usko tumhe khud handle karna padega. Aur agar bahar jaoge to layer ke player bankar bahar jana. Apna SPF 50++++ saath mein laga kar jana aur mirchidar vibes bana kar rakho. And of course, not to forget, keep yourself hydrated and drink plenty of water. Main ho Priscilla tumhare saath mein. Mirchi Mornings is the name of the show. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. Or WhatsApp करने के लिए 9033 Mirchi. That's my number 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to the second hour of Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla and now we are heading into
2: Mirchi Hour Ka 3.
1: सबसे पहले काफी डिस्टर्बिंग न्यूज. सदर्न कैलिफोर्निया में एक कपल गाओजून श्वेन और सिल्विया जैंग को चाइल्ड अब्यूज चार्जेस में अरेस्ट किया गया है. अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग मैंशन में एट लीस्ट 21 चिल्ड्रन एज्ड जस्ट 2 months टू 13 ईयर्स वर बीइंग केप्ट इन व्हाट प्रोसिक्यूटर्स डिस्क्राइब्ड एज हॉरिफिक कंडीशंस. मेनी ऑफ द चिल्ड्रन वर रिपोर्टेडली बॉर्न थ्रू सरोगेसी. इन्वेस्टिगेटर्स अलेज द चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू डेली फिजिकल अब्यूज बाय नैनीज. इट्स अ डीपली ट्रबलिंग केस एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू. नंबर 2 पर राजपाल यादव केस में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान एक्टर राजपाल यादव जोक्ड अबाउट मेकिंग अ फिल्म बेस्ड ऑन हिज लॉन्ग रनिंग चेक बाउंस केस. द प्रपोज टाइटल 16 सावन जेल के. बाय 16 द डिस्प्यूट हैज रिपोर्टेडली स्ट्रेच्ड अक्रॉस 16 इयर्स. एंड लास्टली क्रिकेट से टीम इंडिया के जर्सीज के पीछे वो मिस्टीरियस बल्ज क्या है. दैट्स नॉट अ सीक्रेट स्नैक कंपार्टमेंट. इट्स अ जीपीएस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डिवाइस टक्ड इनटू अ पाउच इन द कंप्रेशन वेस्ट. इट ट्रैक्स थिंग्स लाइक distance, speed, acceleration, deceleration and overall workload, helping the support staff monitor fitness and manage injury risk. And that's it for your Mirchi Hour Ka 3. Follow karo mujhe Mirchi Press is my handle name on Instagram and X and WhatsApp number hai 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन? ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है, देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15।
3: प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स।
4: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स। बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
11: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
12: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
13: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
14: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
13: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
14: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
13: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
17: On Oak Tree Road, festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
18: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
19: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
20: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
21: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
20: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
22: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
23: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
22: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
23: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
22: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: दीवाने।
1: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर स्क्रोलिंग से दिल भर गया है तो अब लक की थोड़ी सी बात कर ले भाई। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, और 9 रातों में मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं 9 गोर्जियस गोल्ड चेन्स कर्टसी वीरानी ज्वेलर्स। यप, इट्स मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। हर नवरात्रि की रात को लकी विनर्स जीत सकते हैं प्रेशियस गोल्ड चेन्स, मतलब की माता रानी की ब्लेसिंग्स तो रहेंगी, साथ साथ में थोड़ा सा गोल्डन ब्लिंग ब्लिंग भी तुम्हें मिल सकता है। पार्टिसिपेट करना सुपर सिंपल है। व्हाट्सएप कर सकते हो नवरात्रि लिखकर, अपना पूरा नाम लिखकर भेजो 9033647244 पर, दैट्स 9033 मिर्ची, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। लिखो नवरात्रि, अपना पूरा नाम और फोन नंबर लिखकर मुझे भेज दो अभी की अभी। और फिर वेट करना है मेरे कॉल का, कॉल करके मैं तुम्हारे साथ खेलने वाली हूँ एक कॉन्टेस्ट, तो उसके लिए रेडी रहो। अभी के लिए फटाफट से अपनी एंट्रीज रजिस्टर कर लो। एंड व्हाइल यू आर इन द फेस्टिव मूड, वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक्ट्री रोड हैज स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट करो इन पर्सन या फिर ऑनलाइन veeraniejewelers.com पर जाकर चेकआउट करो। और अभी मिर्चीदार बैंगल्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

करती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली, तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मर्ची मॉर्निंग्स पर। अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। आज का बर्थडे क्लब जो है काफी ब्लिंग ब्लिंग है। देसी स्क्वाड से वी've गॉट एक्टर शरद खेलकर, क्रिकेटर जहीर खान, सिंगर अभिजीत सावंत एंड एक्ट्रेस रेणुका शहाने, ये सब तुम्हारे साथ अपना बर्थडे शेयर करे। और इंटरनेशनल गैंग में वी've गॉट टोनी ब्रैक्सटन, साइमन काउल, यो यो मा, टॉम यॉर्क एंड यस लुइस कैपाल्डी। बेसिकली अगर आज तुमको बर्थडे केक मिल रहा है तो कंपनी काफी म्यूजिक तुम्हारे साथ। और एक इंटरेस्टिंग वन, वी've गॉट शॉन एंड एरन एशमोर, दिस कैनेडियन एक्टिंग ट्विन्स वर बोर्न ऑन दिस वेरी सेम डे। तो बर्थडे बेबीज, टुडे इज योर डे, केक खाओ, विशेस कलेक्ट करो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होने का लाइसेंस आज तुम्हें मिला हुआ है। अपने बर्थडे शाउट आउट्स तुम मुझे भेज सकते हो डायरेक्टली मैसेज करके। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with

0: आर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
7: 2108069।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
11: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
12: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट.
2: RajWells.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,215. $4,215 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आने वाली पुष्य नक्षत्र धनतेरस दिवाली के समय गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं उससे पहले आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ RajJewels की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आज ज्वेलरी अप्रूव होने पे गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ, गोल्ड का प्राइस लॉक्ड, 9 इंस्टॉलमेंट्स में सेम प्राइस पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाएगी और 9 किश्तों में RajJewels की टीम को पैसे मिलेंगे बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मेरे साथ रहो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Cámbala! ¡Murga, murga! ¡La viva la murga! ¡Mirchi, murga!
1: ¿Aló?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है बताइए.
1: हरा काट के देख धीरे से.
2: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशंस.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
8: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी. रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org.
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
10: यू आर लिस्निंग टू द MPO, इमिग्रेशन बोस, वीजा सर्व नोस, US एंड कैनेडियन इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी लॉयर्स हु स्पीक योर लैंग्वेज.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: चुराने का जरूरत नहीं. मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
18: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
19: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
19: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
20: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
21: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
22: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
21: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: प्रिसिला के साथ सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट, जहां पर पहली छह राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, एनर्जी फुल चार्ज पर है आज। क्रिएटिव आइडियाज का फ्लड आ सकता है, सो पिच दैट ओरिजिनल आइडिया, लीडरशिप नोटिस करेगी। लेकिन ईगो को भी थोड़ा सा पार्किंग में रखो यार। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज फोकस घर, फैमिली और फाइनेंसिस पर है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बात करो, अजम्पशंस का नेटफ्लिक्स सीजन मत बनाओ। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, नेटवर्किंग गेम काफी स्ट्रांग है। क्विक थिंकिंग और कम्युनिकेशन से वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों में प्रोग्रेस होने वाला है। बेसिकली योर माउथ एंड ब्रेन आर फाइनली वर्किंग ओवर टाइम, यूज इट रिस्पॉन्सिबली। लकी कलर इज कोबाल्ट ब्लू, लकी नंबर इज 23। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल खोलना रिलेशनशिप्स को डीपर बना सकता है। थोड़ी एंजाइटी आए तो ओवरथिंक नहीं बल्कि क्लियर कॉन्वर्सेशन करो। माइंड रीडिंग का कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, आज लीडरशिप एनर्जी फुल वॉल्यूम पर है। सोशल प्लान्स बनाओ, कॉन्फिडेंस को करियर में चैनल करो। बस स्वैगर इतना हो कि एलिवेटर भी तुम्हारे स्वागत में खुल जाए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रहना आज के दिन। लकी कलर इज सनफ्लावर, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, लेस नॉइज मोर फोकस, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, क्वाइटली गेट द वर्क डन एंड यू विल बिल्ड समथिंग सॉलिड फॉर द लॉन्ग रन। आज केओस को स्प्रेडशीट से हरा सकते हो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 32। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। ये इंस्टाग्राम और एक्स पर है, और व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
5: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
8: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा,
7: एंड अक्टूबर 18th, द वॉइस बिहाइंड बारिश एश किंग। Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
12: नवरात एकत स्पिरिट
13: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
12: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
13: तारीख 18मी ना रोज 8म यज्ञ, 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
18: Mujhe nau lakha manga de re o siya diwane.
9: Sirf aapko nahi, mirchi ke sang ab pure 9 lucky winners ko milega 9 gold chains.
19: Are kehna kya chahte ho?
9: Kyunki is navratri Veerani Jewelers lekar aaya hai mirchi 9 lakh ka haar. 9 navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain 1 precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp navratri to 9033647244. That's 9033 mirchi, aur taiyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions presented by Veerani Jewelers
11: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit veeranijewelers.com.
20: Tera kya hoga Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
20: Ab mirchi kha.
22: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। आज तुम्हारे प्लैनेट्स कितने चैटी हैं, लेट्स फाइंड आउट।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, चार्म इज योर सुपर पावर टुडे। न्यू कनेक्शंस बनेंगे, रिलेशनशिप्स जो है काफी स्मूथली नेविगेट होंगे और बैलेंस भी मिलेगा। मतलब कि स्केल्स जो है फाइनली वेइंग समथिंग अदर देन शुड आई टेक्स्ट देम। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर विजिबिलिटी स्ट्रांग है, पीपल आर नोटिसिंग यू, सो ओन दैट स्पॉटलाइट। लेकिन इमोशंस जो है वो इंटेंस हो सकते हैं, ऑनेस्टी रखो और बाउंड्रीज क्लियर रखो। हर फीलिंग को टेड टॉक बनाना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ऑप्टिमिज्म इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग टुडे। हेल्थ, लर्निंग, ट्रैवल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, कुछ फ्रेश डोर्स ओपन हो सकते हैं। बेसिकली पासपोर्ट को इमोशनल सपोर्ट देने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 19। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मनी मैटर्स स्लो एंड स्ट्रेटेजिक, शेयर्ड फाइनेंसेस या बिग डिसीजंस में प्लानिंग फर्स्ट इंपल्स लेटर, बैंक अकाउंट को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए बॉस। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 40। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज लिसनिंग इज योर सीक्रेट वेपन, रिलेशनशिप्स में भी और दोज इंपॉर्टेंट वर्क नेगोशिएशंस में भी। पहले सुनो, सोचो, फिर बोलो, नॉट एवरी कॉन्वर्सेशन नीड्स अ रिबटल। लकी कलर टिप्स में भी और दोज इंपॉर्टेंट वर्क नेगोशिएशंस में भी। पहले सुनो, सोचो, फिर बोलो, नॉट एवरी कॉन्वर्सेशन नीड्स अ रिबटल। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज।

0: हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ अजू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: The mortgage industry has changed over the years, but our honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
15: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
17: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने
18: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
19: अरे कहना क्या चाहते हो
18: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
20: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट viranijewelers.com
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
22: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है
24: एक ही होता है
21: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: एंड जस्ट लाइक दैट मेरी मॉर्निंग की कॉफी खत्म हो चुकी है. होपफुली तुम्हारा कम्यूट भी खत्म हो चुका होगा. लेकिन अगर कहीं भी नहीं जा रहे हो तो वेट, योर डे डजंट हैव टू लूज ऑल द फन. दैट्स राइट देसी फैम, मिर्ची मॉर्निंग्स के रैप अप का टाइम तो आ चुका है. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी थ्रू आउट द ट्रैफिक, चाय ब्रेक, स्कूल ड्रॉप ऑफ, वर्क कॉल्स. और उन लोगों को भी स्पेशल थैंक यू जो सुबह सुबह 3 मीटिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुके फिर भी मेरे साथ बने हुए थे. एंड बिफोर आई लेट यू गो, नवरात्रि इज राइट अराउंड द कॉर्नर और उसमें लक को थोड़ा सा माने का टाइम आ चुका है. वही द कॉन्टेस्ट मिर्ची के साथ 9 लकी विनर्स को मिल सकती है 9 गोल्ड चेन्स. दैट्स राइट, तुमने बिल्कुल सही सुना, मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स. स्टार्ट हो चुका है 9 नवरात्रि की नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एवरी डे टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स. पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा इजी है. व्हाट्सएप खोलो अभी के अभी, टाइप करो नवरात्रि और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. या भी तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो. दैट्स क्विकर. राइट नवरात्रि, देन योर फुल नेम एंड फोन नंबर एंड देन सेंड इट टू मिर्ची प्रिस. दैट्स माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड देन गेट रेडी फॉर माई कॉल जहां पर मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्टेस्ट खेलने वाली हूँ. एंड इफ यूर अराउंड ओक ट्री रोड, वीरानी झूला को विजिट करना बनता है. क्यों? क्योंकि वहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. या फिर तुम ऑनलाइन विजिट कर सकते हो viranijewelers.com पर. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर मेकिंग माय मॉर्निंग्स लॉट मोर मिर्चीदार. अभी के लिए टाटा बाय बाय. यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कभी कभी किसी कैरेक्टर की दुनिया में एंटर करने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना एनफ नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आपको उसकी दुनिया को जीना पड़ता है एंड बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं इन आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो ऐसा कर पाते हैं, वन ऑफ देम बीइंग रसिका दुग्गल। और उनके करियर को देखें तो शायद उनकी जर्नी इसी डिफरेंस को ब्यूटीफुली डिफाइन करती है। किस्सा जैसी फिल्म से लेकर मंटो, दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर तक उन्होंने बार बार ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। खुद रसिका ने भी कहा है कि मंटो ने उन्हें एक डिफिकल्ट करियर फेज से बाहर निकाला और मिर्जापुर एंड दिल्ली क्राइम ने उन्हें एक वक्त में ही कम्प्लीटली डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और अब उनकी अपकमिंग फिल्म लिटिल थॉमस के लिए उनकी प्रेप के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो जेसी मिरांडा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, हु इज डीपली कनेक्टेड विद म्यूजिक, जिसके लिए रसिका ने बजाते पियानो क्लासेस लिए हैं, नॉट फॉर अ डे और अ वीक बट 4 महीनों के लिए, जहां उन्होंने मोजार्ट, शूमन और चोपैन की कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस की प्रैक्टिस की। और क्योंकि उसी वक्त वो एक हॉरर शो की शूटिंग भी कर रही थी तो उस शूट पे वो अपना पोर्टेबल कीबोर्ड साथ लेकर जाती थी और टेक्स के बीच में प्रैक्टिस किया करती थी। और शायद यही रसिका के करियर की सबसे इंटरेस्टिंग थ्रेड है। रोल छोटा हो या आइकॉनिक, कैरेक्टर फेमिलियर हो या बिल्कुल अनफेमिलियर, वो उसके अंदर घुसने के लिए कुछ नया सीखने को रेडी रहती हैं। और शायद इसीलिए उनके कैरेक्टर स्क्रीन पर एक्टेड नहीं, लिव्ड इन फील होते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Milchi, burga. Hello.
2: अच्छा, तो ये कब से लगने लगा था आपको? क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा, बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये? पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा, बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा, कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो, ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई, तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटा।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, इज़लिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Inefficient,
13: very complex,
14: clumsy or
15: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
16: नो लखा वाला हार पहना है चुराएल।
17: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
17: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
19: Listener MI, back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: कुछ गानों की अपनी ही किस्मत होती है। हम दिल दे चुके सनम, नहीं नहीं इस गाने की नहीं, बट इस फिल्म की जरूर से बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी 1999 में, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और इस फिल्म का ये एपिक ट्रैक तो डेफिनेटली याद होगा आपको।
1: तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार।
0: सो ये गाना ना इस मूवी के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। यस, बेसिकली लिरिसिस्ट महबूब ने ये कहानी सुनाई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया कि भाई वो और म्यूजिशियन इस्माइल दरबार साथ में कई गाने क्रिएट करके अपने बैंक में डाल दिया करते थे, एंड तड़प तड़प के वाज वन सच सॉन्ग जो फाइनलाइज हुआ था फॉर अ मूवी नेम्ड दस। इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेट मुकुल आनंद जी, बट अनफॉर्चुनेटली 1997 में ही पास्ड अवे एंड द मूवी गॉट शेल्व्ड, जिसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एल्बम का डिस्कशन कर रहे थे, तब इस्माइल दरबार और महबूब का ये गाना उन्होंने सुना, जो उन्हें इतना पसंद आ गया दैट उन्होंने इन दोनों ही आर्टिस्ट को अपनी इस फिल्म के एल्बम के लिए फाइनलाइज कर लिया। तभी मैंने कहा कुछ गाने अपनी अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, और बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखने जाते हैं उसके पीछे ऐसी ही कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit Virani Jewelry.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी। चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जूली। हेलो। तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
3: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, हम आप क्या पटना बिहार झारखंड?
3: पटना।
0: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी। तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
3: हाँ, हम तैयार हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई।
3: दिया मिर्जा।
0: ओहो, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए।
3: रहना है तेरे दिल में।
0: क्या बात है। तो रहना है तेरे दिल में रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
3: माधवन।
0: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
3: शैतान।
0: बहुत बढ़िया। शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
3: सनत सरदार।

0: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
1: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
1: दबंग।
0: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
1: सलमान खान।
0: क्या बात, सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
1: प्यार किया तो डरे।
0: ओहो लड़की एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
1: काजोल।
0: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
1: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
1: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
1: बादशाह।
0: आ आ आ आ, आ, आ, आ यहाँ आप गलत हो गई। बट आपने जो इस गेम में गर्दा उड़ाया है, जो ताबड़तोड़ आपने फिल्मचिपना दिखाया है, मजा ही आ गया बहुत।
1: मेरे को भी आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है।
0: जूलिया
1: आई लव यू।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमारी इस बिहारी बाला ने तो गजब का समा बांध दिया, जिसके लिए इनको ये टैग देना तो बनता है।
2: मिर्ची फिल्मची।
0: और अगर फिलहाल आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी जाग रहा है तो जगाइए जगाइए और मिर्ची श्रुति से इंस्टा पे जरूर मिलिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
4: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
8: पेड फॉर बाय देसीब्लू, desiblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
9: ओ नो,
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
13: Yeah, Meethi Mirchi, brighten up your day, we will find a way on Meethi Mirchi, aha।
14: खेलो मगर प्यार से।
15: श्रुति श्रुति
14: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
16: देखो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट मैं मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज हमने की थी जूली मैम से, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है रानू। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
17: हैदराबाद से।
16: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था, क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
17: यस यस प्लीज गो अहेड।
16: ऑलराइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज, शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
17: कल होना हो।
16: कल होना हो में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
17: सैफ अली खान।
16: सैफ अली खान एक पैशनेट म्यूजिशियन, ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लेबा किस फिल्म में करते हैं?
17: परिणीता।
16: परिणीता में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
17: विद्या बालन।
16: विद्या बालन को जिंदगी में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
17: डर्टी पिक्चर।
16: डर्टी पिक्चर में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
17: इमरान हाशमी।
16: यस, इमरान हाशमी की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकेंड पार्ट आ रहा है?
17: आवारापन।
16: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट।
17: थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में, एंड माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड।
16: Okay.
17: So she's prompting whatever I'm saying, she's prompting.
16: Oh.
17: And today is our 8th anniversary. That is why my husband is just near me.
16: Oh my God, that is so sweet. Wish you both a very, very, very happy anniversary.
17: Thank you so much.
16: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. So isi baat pe aapko ye tag to zarur dungi main.
18: Mirchi, Filmchi.
16: तो बाबू मोशराय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्म ची गेम आपसे मिस हो गया, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, एंड रेस्ट आई टेक केयर ऑफ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल.
10: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची.

0: इन फिल्मों में हीरोइंस को बचाया नहीं जाता, दे फाइट बैक एंड राइट देयर ओन स्टोरी।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना गिने चुनी ही ऐसी फिल्में हैं, और इसलिए मैंने सोचा आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात करूं जहां वुमेन एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड फॉट बैक। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट सिस्टम मिडनाइट, नंबर दो पे NH-10, नंबर तीन पे मॉम, नंबर चार पे बुलबुल एंड नंबर पांच पे नो वन किल्ड जेसिका। तो शुरू करते हैं करण खंडारी डायरेक्टोरियल सिस्टम मिडनाइट से, जो 2024 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग राधिका आप्टे एज उमा, जो एक अनकन्वेंशनल वुमन है हु रिफ्यूजेस टू फिट इन टू द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। देखो, हमें भी पता है कि शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर जरूरी नहीं कि हैप्पी ही हो। एंड सिस्टम मिडनाइट में राधिका आप्टे की उमा एक अरेंज्ड मैरिज में फंस जाती है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सबमिसिव वाइफ बनने को रेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी और क्वर्की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये फिल्म एक वुमन के रिबेलियन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रीडम की सर्च को एक्सप्लोर करती है। ऑल्दो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को इस मूवी की स्टोरी टेलिंग समझ में ही नहीं आ पाए, बट लेट मी टेल यू, इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 2024 के कैंस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की मूवी है ये। तो अगर आप एक मर्द हैं और अपने अंदर के फेमिनिज्म को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, देन डू वॉच द मूवी। बाकी की चार फिल्मों की डिस्कशन सबसे कुछ ही देर में होगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑन।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Rambala!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló? Sir, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ. सर, आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है. सर, ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटू सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट.
2: कैंची ले ली सर.
3: लेकिन सिचुएशन है.
2: कोई मिल नहीं है
3: आसपास, है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
2: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
3: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
2: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
3: ठीक है. बताइए,
2: हरा काट के देख धीरे से.
3: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशन.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना. मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा
3: है. हाँ.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
8: Sona kharidne ke soch rahe hai? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
10: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स.
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा. मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन.
10: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू.
11: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को.
10: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री.
11: रेडियो पार्टनर मिर्ची.
12: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
18: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
19: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
20: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
19: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
21: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट virani jewelers.com।

0: From a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारे हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम इग्नाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बनके रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
3: I am not going to bed with you ever again.
2: But why? What did I do?
3: That bed is horrible. It's outdated, and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
2: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
3: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
2: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
3: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
4: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: ओह नो,
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
11: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
12: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
13: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1, ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
14: ना ना लखा वाला हार पहना है चुराएल.
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए for your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
8: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903364744। दैट्स

0: हिंदी सिनेमा की पहली बैट कॉम
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। पैटकॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर। एंड भाई साहब क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आकाश कौशिक, इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा। एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त। और इस चक्कर में जो ह्यू एंड क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी। बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हेलो हेलो, श्रेया हाजिर हो गई है। अब जैसे ही उस जमाने के गाने सुनोगे तो उस जमाने की बातें तो याद आएंगी, और जब बातें आएंगी तो इस जमाने की श्रेया याद आएगी। हेलो हेलो, वेलकम। अच्छा, आज जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, वो पहली फिल्म बड़ी सारी चीजों में थी। फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि सबसे लंबी थी, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर मेड, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसके दो ब्रेक्स थे, द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसमें राज कपूर साहब कलर में थे, यानी द फिल्म दैट ही डिड वाज इन कलर, एंड द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने भाई यूरोप में जाकर के अपने बहुत सारे सीन्स शूट किए। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बात होगी, यानी राज कपूर साहब की संगम की बात होगी। तो बस करेंगे बड़ा सारा संगम उस जमाने के गानों के साथ। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या जी वजी हरकत कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊँ?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊँ? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है
2: आपसे ही, बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूँ तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया। एक सेकंड।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ऐसे, ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
7: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
8: Yes, only at Indo American Festival INC, 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
6: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
5: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26+ DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द क्राफ्टी हैंड्स .com और कॉल
11: 732-397-0057। चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म संगम की बात हो रही है। वेल, ये फिल्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बहुत सारे मामले में थी। एक तो राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, ये पहली इंडियन फिल्म थी जो कि लॉन्गेस्ट थी और इसमें दो एड ब्रेक्स थे, मतलब दो ब्रेक्स थे, नॉट एड ब्रेक्स, प्रॉपर ब्रेक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ इसी फिल्म की। सो राज कपूर साहब ने इस फिल्म की स्टोरी ना वैजयंती माला जी को नरेट की थी और वो काफ़ी टाइम तक उनका वेट करते रहे कि अब भाई वैजयंती माला से यस आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं, वो उनके ऑपोजिट उनकी राधा बनेंगी। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। एक महीना, दो महीना, तीन महीने बीत गए। फिर उस टाइम पे ना टेलीग्राम चलते थे, यानी अब मैं कैसे बताऊँ, आजकल का व्हाट्सएप आप ले लो, एज इन लेटर्स जाया करते थे पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी मैसेज पहुँचाना होता था वो टेलीग्राम के थ्रू होता था। तो एक दिन, एक शाम को राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिखा वैजयंती माला को और उन्होंने उस टेलीग्राम में लिखा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। क्योंकि इसमें वैजयंती माला जी का जो रोल था वो राधा कहलाना था। आगे क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो राज कपूर साहब ने लिख करके पूछ लिया टेलीग्राम के थ्रू, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर क्या, उधर से भी टेलीग्राम आया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आज संगम फिल्म की बात हो रही है, द फर्स्ट फिल्म ऑफ राज कपूर साहब जो कि कलर में थी, इंडिया की पहली फिल्म जो यूरोप जाकर के शूट हुई थी। वेल, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, द लॉन्गेस्ट फिल्म एवर। ऑफकोर्स इसके बाद आई थी मेरा नाम जोकर जो और भी लंबी थी। सो मैं बात कर रही थी कि जब राज कपूर साहब ने ना इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, इस फिल्म का नरेशन अपनी हीरोइन वैजयंती माला जी को सुनाया, तो वो ही वॉज वेटिंग कि भाई अब हाँ आएगी, अब हाँ आएगी, लेकिन वैजयंती माला की कोई हाँ ही नहीं आई। 2 से 3 महीने के बाद राज कपूर साहब ने टेलीग्राम लिख करके भेजा। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मूवी का नाम संगम और कैरेक्टर जो कि वैजयंती माला को करना था उसका नाम राधा। तो उधर से भी एक रिप्लाई आया टेलीग्राम के थ्रू, होगा होगा होगा। और इसी को भाई इस गाने में रखा गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वैजयंती माला जी का होगा होगा होगा भी है इस गाने में। कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग @mirchijituraj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंड.

0: के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
2: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
3: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये वही टाइम था जब इंडस्ट्री के तीन दिग्गज दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा में कलर लाने की। इसीलिए उनके सामने अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आ रही थी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। एंड दैट इज व्हाई राज कपूर और देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में सबसे पहली कलर फिल्म्स लॉन्च करी। वेल, दिस वाज द टाइम जब देवानंद पहली फिल्म विच वॉज इन कलर अंडर नवकेतन प्रोडक्शंस गाइड

0: इसको बना रहे थे एंड साइमल्टेनियसली राज कपूर साहब आरके फिल्म बैनर के अंडर संगम बना रहे थे। ये दोनों फिल्में ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ रिलीज हुई थी। पुरानी जीन्स पे आज संगम की बातें चल रही हैं, तो बस कहीं भी मत जाइएगा, इस फिल्म की बातों का और इस फिल्म के गानों का संगम भी होता रहेगा यहाँ।
1: मेहरबान लिखूं

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

राज कपूर साहब ने बस ठान लिया था कि वो ना दिल्ली में जाकर के इस गाने की शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता, वो पेड़ पौधे जिसपे वो बस चल रहे हैं गाना गाते हुए, वो लोकेशन दिल्ली में मिली नहीं रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट इज सेड दैट द शोमैन ना हैड अ कीन नज़र। जब उनको लोकेशन चूज करनी होती थी तो वो यू नो एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन भी कैंसिल कर देते थे अगर उनको लोकेशन में मजा ना आए तो। तो जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द फिल्म संगम, ये है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। इस गाने की शूटिंग के लिए राज कपूर साहब को ना एक सन्नाटे वाली सुनसान सी रोड चाहिए थी, और ऐसा चाहिए था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हों। वो दिल्ली गए अपनी पूरी यूनिट को लेकर के, लेकिन वहाँ पे ना उनको कोई लोकेशन ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिरी दिन जब हताश होकर के लौटने वाले थे, उनकी नज़र पड़ी एक गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एंड देन ही सेड कि अरे बस यही तो मैं ढूंढ रहा था। स्पेशल परमिशन ली और ये गाना एक्चुअली में दिल्ली में शूट हुआ है। ये गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख धीरे से।
2: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा
2: है।
1: हाँ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
9: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
10: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
9: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
10: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
9: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
11: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
12: No, lakha wala haar pehna hai churai.
13: Churane ka zarurat nahi. Mirchi ke sang ab pure 9 lucky winners ko milega 9 gold chains.
14: Bade bade deshon mein aisi choti choti baatein hoti hain.
13: Kyunki is navratri Virani Jewelers lekar aaya hai Mirchi 9 lakh ka haar. 9 navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain 1 precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp navratri to 9033647244. That's 9033 Mirchi. Aur taiyar ho jaiye. For your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
15: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
16: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
18: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
19: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
20: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
21: हर ये
2: 93.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

राज कपूर साहब ने पूरा फ्रीडम दिया दिलीप साहब को, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि दिलीप साहब इस फिल्म में उनके साथ काम करें। तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप हूं श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ फिल्म संगम की, जो आर के फिल्म्स की फर्स्ट कलर फिल्म भी बनी। सो राज कपूर साहब वांटेड टू वर्क विद दिलीप साहब, ही रियली वांटेड कि वो किसी तरह इस फिल्म में आ जाए। तो उन्होंने ना उनको ऑप्शन दिया था कि वो रोल भी चूज कर सकते थे जो राज कपूर साहब का था, और वो रोल भी चूज कर सकते थे जिसमें बाद में राजेंद्र कुमार आए। दिलीप साहब का कई महीनों तक का हाँ का वेट करते करते जब वो एक दिन दिलीप साहब से मिलने गए, तो दिलीप साहब ने उनको साफ साफ पता है क्या कहा कि वो राज कपूर के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि तुम्हारी फिल्म है और इसमें पूरी लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे, यू आर द शो मैन। फिर ये रोल गया राजेंद्र कुमार को, लेकिन एक बैकअप प्लान भी था। क्या था बताऊंगी आपको, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: नवरात एक स्पिरिट
6: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
5: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
6: तारीख 18मी ना रोज 8म यज्ञ, 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Durga Puja ka celebration ho aur Kolkata ka flavor na ho, aisa kaise?
10: Maitri brings you thak, puja, aarti, bhog, sindoor khela, cultural programs and a delicious dinner. Plus, live music by Mahalakshmi Iyer, Ankita Bhattacharya and Shubhadeep.
11: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at my3usa.org.
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
14: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
14: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai.
17: Ek hi hota hai.
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिरोज खान ना एंड तक बस ये होप करते रहे कि शायद शायद शायद ऊपर वाले प्लीज राजेंद्र कुमार इस रोल के लिए मना करते हैं। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम, इंडिया की पहली फिल्म जिसमें दो ब्रेक्स थे, इंडिया की पहली फिल्म जो कि यूरोप में जाकर के शूट हुई थी, राज कपूर साहब की पहली कलर फिल्म। सो मैं बता रही थी कि इसमें जो रोल किया है राजेंद्र कुमार ने, वो रोल सबसे पहले दिलीप साहब को गया था, लेकिन दिलीप साहब ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई सारा लाइमलाइट तुम ही ले जाओगे बिकॉज यू आर द शोमैन। फिर उसके बाद ये रोल गया राजेंद्र कुमार को। अब राजेंद्र कुमार जब तक यस कहते तब तक राज कपूर साहब को अप्रोच किया उनके दोस्त फिरोज खान ने, और फिरोज खान का बेहद मन था टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एवरीबडी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आर के फिल्म्स। तो क्या हुआ, हुआ ये कि भाई राज कपूर साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि अगर राजेंद्र कुमार मना कर देंगे तो ये रोल फिरोज खान करेंगे। अब भाई राजेंद्र कुमार ने मना नहीं किया और फिरोज खान का वो सपना टू बी अ पार्ट ऑफ राज कपूर फिल्म्स वो सपना ही रह गया। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें यानी संगम की बातें विद मी श्रेया। और हाँ, अगर मुझसे कुछ अलग से पर्सनल बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टा पे तो मैं हूँ ही, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

इस खत को गाने में बदला था। पुरानी जीन्स पे आप हूं श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म संगम। सो हसरत जयपुरी साहब, शंकर जयकिशन जी, ये इनकी टीम थी, गाने बनाया करते थे। शंकर जयकिशन जो थे वो गाने कंपोज करते थे और हसरत जयपुरी गाने लिखा करते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में या तो हसरत साहब गाने लिखते थे या फिर शैलेंद्र जी। सो हुआ ये कि हसरत साहब का आर्ग्यूमेंट हुआ शंकर जयकिशन जी से एंड इसकी वजह से ना इन लोगों में काफ़ी लंबे अरसे तक बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, हसरत साहब ने एक दिन ख़त निकाला और वो अल्फाजों के धनी तो थे ही। उन्होंने उस ख़त पे लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम

नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। और जैसे ही शंकर जयकिशन जी ने खत पढ़ा, फटाक से हसरत साहब को गले लगा लिया। वेल, इसी खत को फिर गाने में तब्दील किया गया, संगम का द फेमस सॉन्ग, ये मेरा प्रेम पत्र बाय रफी साहब। ये गाना मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक और रफी साहब का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai for the hottest pop music. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me. Instagram pe mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic. A special shout out all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with Ghana number 10. Sanju Rao की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है मुसाफिर कैफे से है ये गाना. गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: Sana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabir wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा। इस तरह
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहा है,
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर
3: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
2: हां ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Gana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi
16: Number 8।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, एक गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉस ओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स एंड आई हैव टू एडमिट आई कैन नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना मलयालम में, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसमें बेसिकली बात हो रही है एक लड़की की, उसकी स्माइल, डिम्पल्स, उसकी आंखें, इनक्रेडिबल एफ्रो R&B इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड अ उबर मॉडर्न ग्रूव। एंड देन श्रेया घोषाल का हुक टेक्स दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल। आई थिंक दैट्स द रीजन इस गाने में लैंग्वेज का कोई बैरियर है ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बीट। अब श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अर्जुन KDS रॉन एंड 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके इट्स अ गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं. इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट. आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट. इस नवंबर जरूर वोट करें.
7: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
8: Nine nights, one divine spirit.
9: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
8: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
9: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naum Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
8: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, bestie, at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: Radio Mirchi, it's hot.

0: कृष्णा एंड धंधा न्योलीवाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika, and this show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, bindaas aake hit me up. Gaana number 5 par humne suna Kalyani. Ek Malayalam gaane mein Shreya Ghoshal ne apna Hindi remix diya hai. The world of pop music is so diverse that ye ek box mein aa hi nahi sakta hai. आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है, फिल्म, बिग मेलोडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस। वो वॉइस वही है, बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद हर सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक हू इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया, जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है, लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है, इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन एंड अनुराग मिश्रा के लिरिक्स। बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe aap. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gana number 10 se gana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs of the week, it's time for what we call
0: Kanika's Cassette Classic.
1: हमारी कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए.
1: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में. 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था. सामी मारूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज. इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है. आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो. एंड कुछ तो बात है अक्टूबर के माहौल में, हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनी वे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है. आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूजनल. वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाईज थोड़ी ज्यादा फील होती है. एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल सुप्रियो इज द परफेक्ट साउंडट्रैक टू माय अक्टूबर इवनिंग. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. थ्रोइंग बैक टू आवर क्लासिक्स, बाबुल सुप्रियो की आवाज में दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और आशिका है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा अरोरा की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बाजरा की कॉम्पोजिशन है, इनका म्यूजिक शर्वी यादव, बाजरा का गाना, गाने का नाम है बैंगर। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बैंगर is at the top. Dono gaane back to back only on Gaana Indie Top 10. Pandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइड Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
7: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 डेज पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
6: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
7: वी आर ओपन 7 डेज अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग एरियाज फॉर द लास्ट 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: Wow! यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
9: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
8: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

नवरात्रि की पिक्चर तो ऑलमोस्ट रेडी है, आउटफिट फाइनल, डांडिया रेडी, प्लेलिस्ट रेडी, लेकिन मिर्ची की पिक्चर में अभी गोल्डन ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और इस नवरात्रि फेस्टिव में वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची नौ लक का हार। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि नवरात्रि सेलिब्रेट करते करते लकी विनर्स के पास चांस है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन नवरात्रि के हर रात में। तो बस अब हीरो वाली एंट्री आपको खुद लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कीजिए हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप कीजिए नवरात्रि और रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi, SIDDHI। आपको बस टाइप करना है नवरात्रि और इस अनोखे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है जहां आप जीत सकते हो प्रेशियस गोल्ड चेन। और पिक्चर में ज्वेलरी डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वीरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी पर 22 कैरेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फेस्टिव स्पेशल ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फेस्टिव लुक के लिए जो ज्वेलरी दिल को पसंद है वो आप चूज कीजिए, और जो गोल्ड चेन किस्मत में आए वो मिर्ची से जीतिए। मोर डिटेल्स @VIRANIJewelers.com और जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। मिर्ची नौ लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची। टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे इंस्टा के डीएम कर दीजिए। और अब पिक्चर रेडी हो तो बैकग्राउंड स्कोर भी तो चाहिए यार, तो डांडिया उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और शाम शानदार में अगला बॉलीवुड बीट पकड़ो ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Milci, burka. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा, कौन सा काटू सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया.
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल, एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास
2: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है. बताइए.
1: हरा काट के देख. धीरे से.
2: 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
7: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
6: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is kallol.com. Or call 917-440-9266.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स.
10: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा. मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन.
9: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू.
10: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को.
9: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री.
10: रेडियो पार्टनर मिर्ची.
11: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
14: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
15: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
16: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
17: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
18: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
20: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
21: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
22: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
23: तेरा क्या होगा कालिया?
24: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
23: अब मिर्ची खा।
25: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती। वही
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा कर मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू।

0: Aslin. 9 nights, one divine spirit.
1: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
0: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
1: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
0: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
2: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
0: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
0: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
6: No!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
15: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
16: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो, वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटिफुल मेलेडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मैं और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। Of course, the third and the biggest hero of the film Drishyam is Ajay Devgan. Vijay Salgaonkar, kya karta hai? Film jinhone follow nahi ki, unko pehla half zara sa slow lag sakta hai. But second half dekhne ke baad tere ko pata chalega ki pehla half slow hona kyun zaruri tha. Jo original story writer hai Jeetu Joseph, unki tarif karni hi banti hai. Director Abhishek Pathak, one more ace up your sleeve. Please, kisi ke tere ko kahani ya spoilers batane ke pehle jaakar theater mein dekh le. And tu khud apna review Jeetu Raj ko bhej dena on Instagram @MirchiJeeturaj. Hamari team ke taraf se Ajay Devgan की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज।

0: only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy or
13: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शमशानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज़ माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था, और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओ हो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेलेडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता है ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर भाई क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर
2: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा। ठीक है, और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक रीड रोड, इज़लिन।
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
15: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
16: वो तो होगी ही, और ताम झाम भी होगी दुगना।
17: Yes, only at Indo American Festival INC,
18: 28th Dasara Festival on Saturday 10th October
17: at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
15: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar and more.
19: For details call 732-444-8381 or visit dasara.com.
0: बेटा
19: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
20: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
19: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
21: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
22: 2108069।
23: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
24: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
23: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
25: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
26: मिर्ची फ्रेश माल।
27: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो दोस्तों, आज है वेंसडे यानी हम डे यानी आधा हफ्ता तो क्रॉस हो चुका है और गोल्ड मार्केट भी आज थोड़ा नीचे की तरफ सीधा स्लाइड करते हुए नजर आ रहा है। दैट्स राइट, गोल्ड स्पॉट अराउंड $4,113 पर ट्रॉय औंस, व्हिच इज रफली 1.2% डाउन कल से। तो गोल्डन आर में यार गोल्ड का रेट तो हमने बता ही दिया है, लेकिन हम डे का बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि वीकेंड ना अभी दूर नहीं है और इस वीकेंड ओकट्री रोड पर गोल्ड की चमक के साथ बॉलीवुड के सुर भी जुड़ने वाले हैं, बिकॉज राज जूल्स इज ब्रिंगिंग बॉलीवुड जैमिंग ऑन सैटरडे अक्टूबर 10th शाम 5 से 8 बजे तक उनके पार्किंग लॉट में, विच इज एट 1376 ओकट्री रोड इजल इन न्यू जर्सी। यानी लाइव म्यूजिक होगा, बॉलीवुड बीट्स और फुल ऑन जैमिंग मोड, और इसके बारे में हमें और भी जानकारी देंगी तन्वी। सो हे तन्वी, वेलकम टू टुडे शाम शानदार। जो मूड है हमारा वो ऑलरेडी वीकेंड की तरफ देख रहा है और वीकेंड का प्लान तो आपने हमारे लिए बना ही लिया है, तो प्लीज इस बॉलीवुड जैमिंग के बारे में थोड़ा और बताइए हमें।
2: Yes, so we are very, very excited. हम लोग जो प्लानिंग चल रही है हमारी जोर से चल रही है एंड वी हैव अ ह्यूज लाइनअप ऑफ यू नो शो। So I will start as let's talk about you know what we are going to have, what people can expect in this event. So hamara we will start with you know yoga, basically tali yoga, then laughter yoga. We will also have a sitar player, tabla player, and then we will have actual Bollywood dance, and then jamming followed by bhajan jamming. So that's how we are going to wrap up the whole show.
1: Kya baat hai?
2: That's the plan. Yeah.
1: यानी 3 घंटे फुल ऑन पैक्ड होने वाले हैं दोस्तों। देखिए योगा से लेकर बॉलीवुड म्यूजिक से लेकर डांस से लेकर जैमिंग एंड भजन क्लबिंग भी। तो दोस्तों पहुंच जाइए अक्टूबर 10th विच इज सैटरडे शाम 5 to 8 PM 1376 ओक ट्री रोड इजल इन न्यू जर्सी, जो कि है हमारे राज जूल्स का पार्किंग लॉट। तो वहां पर हम सब आपसे मिलेंगे क्योंकि वहां पर होने वाला है लाइव म्यूजिक, बॉलीवुड बीट्स, फुल ऑन जैमिंग मोड। दैट्स राइट तन्वी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपका बेसब्री से इंतजार है, जरूर आइएगा अक्टूबर 10th 3 PM onwards।
1: क्या बात है। तो देखिए वैसे तो ऑफिशियल टाइम 5 to 8 है, लेकिन एवरीबडी इज गोइंग टू लाइन अप एट 3 PM। सो दोस्तों आई विल सी यू ऑन सैटरडे 3 PM onwards अक्टूबर 10th ओकट्री रोड इजल इन न्यू जर्सी राजूज के पार्किंग लॉट पर टू एक्सपीरियंस वन फुल अमेजिंग बॉलीवुड जैमिंग राइड। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारे यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है। और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में, और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त 10 डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
7: मुझे नौ लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक दो तीन, तो बस दिन गिन गिन के रह गए हैं नवरात्रि के। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ दिन मत गिनो, गोल जीतने के चांसेस भी गिनो। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और नवरात्रि की एक्साइटमेंट ऑलरेडी हवाओं में है, क्योंकि यार आउटफिट से लेकर प्लान से लेकर फेस्टिव शॉपिंग सब कुछ शुरू हो चुका है। और इसीलिए जब काउंटडाउन इतना स्पेशल है ना, तो सेलिब्रेशन भी ना थोड़ा और गोल्डन होना ही चाहिए। तो इसीलिए वीरानी ज्वेलर्स और मिर्ची लेकर आए हैं मिर्ची 9 लक का हार, यानी नवरात्रि की 9 नाइट्स और 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, जहां लकी विनर्स के पास एक मौका है टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन। तो अब एक दो तीन करके दिन गिनने के साथ अपना नाम भी गेम में गिनवा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आपको व्हाट्सएप करना है हमारे मिर्ची के नंबर पर 9033647244, टाइप करना है नवरात्रि, आपका नाम, आपका नंबर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchi सिद्धि, SIDDHI। बस आपको टाइप करना है नवरात्रि और आप हो जाओगे कॉन्टेस्ट में रजिस्टर्ड। और दोस्तों, फेस्टिव सीजन की चमक वीरानी ज्वेलर्स पर फुल ऑन धमाके के साथ चालू है, विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो यार, काउंटडाउन मेरे फेवरेट स्टाइल में, एक दो तीन नवरात्रि के दिन गिन और 9 रातें 9 गोल्डन चांसेस टू विन प्रेशियस गोल्ड चेन्स। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए मिर्ची 9 लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। और जब ओपनिंग यार इतनी एक दो दिन से शुरू हुई है, तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी माधुरी स्टाइल बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी, किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चों को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Isca bana, pusca bana, saca bana. Burga, burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
6: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
8: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
11: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
15: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
16: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
15: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सूरों पर 16वीं को।
16: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
15: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
0: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: इस बार दशहरा होगी धमाकेदार।
21: वो तो होगी ही, और तामझाम भी होगी दुगना।
22: Yes, only at Indo American Festival INC 28th Dasara Festival on Saturday 10th October at Lake Papayani Park, Edison, New Jersey, 1 PM to 8 PM.
20: Join us for marvelous Ram Leela, spectacular Ravan Dahan, cultural programs, Meena Bazaar, and more.
21: For details, call 732-444-8381 or visit dasara.com.
23: मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने।
24: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
25: अरे कहना क्या चाहते हो?
24: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 Rapid Fire Questions presented by Virani Jewelers
26: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
27: Listener mein back to back gana sunega.
28: Back to back gana sunega.
27: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
29: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rivals.

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Yeah, Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है. इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग. अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें.
8: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
9: चुराने का जरूरत नहीं. मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है.
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
14: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
14: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
15: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है.
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना लेते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है, तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन
1: 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज only on Mirchi.

0: टुडे।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो।

और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SITDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।